0: योजना स्थान हो सेवा हॉस्पिटल दुलेगोड़ा बीपी चोक में
1: यही जेठ दुई गते शनिवार
2: लामो समय सम्म हरियो खर्का अस्पताल पोखरा में विभागीय प्रमुख भई कार्यरत छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश शर्मा
0: पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा में कार्यरत पेट मुटु छाती सुगर तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी
2: वरिष्ठ हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेघराज लामी छाने
0: पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा में कार्यरत एनिमल स्कैन थायराइड सहित भिडियो एक्सरे विशेषज्ञ डाक्टर संतोष बराल
2: दैनिक उपलब्ध सेवा तर्फ फैमिली फिजिशियन एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन डाक्टर रवि बहादुर गुरुङ
0: वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ बिहान 8:30 देखि 9:30 सम्म दिवसो 3 बजे देखि 4 बजे सम्म डाक्टर अमन कुमार झा
2: हाड़ जोड़ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल बिक
0: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप गुरुङ वरिष्ठ फिजियोथेरापी परामर्श तथा दैनिक उपचार डाक्टर सुसन कालु र स्नेहा मण्डल साथै 24 घण्टा डाक्टर रुकेश कुमार यादवद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध रहेको हुँदा सम्बन्धित रोगका बिरामीहरूले समयमै स्वास्थ्य जाँच गराई मौकाको फाइदा लिनुहोला
3: तनहु सेवा अस्पताल दुलेगौडा फोन 0-65-414-377 मोबाइल 98-560-44-343
4: 103.8 अन्तर्मनको आवाज

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98562279।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज अंतर मन की आवाज।

0: Yeno.
1: Kanung Rose, my Maggie.
2: ए मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिले मामु
0: यंगी रिमथिम डिंगी जो थनलबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयासी
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
0: रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्टा लाफा को के रसे की होसनी है।

0: Sili.
1: Yangji Goila Yeno.
0: Kanuros Mamekin.
2: ए मोचा छ्या मामु छ्या मोचा लु मामु लु मोचा मिले मामु
1: यंगी रिमथिम दिंगी जो थन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयासकी
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
1: रेडियो भोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
0: नाको रसेमु नजाटनी पट्टा लाफा को केरा से की होती है।

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो टार्गेट
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301

0: विकास अधिकारी डाक्टर शंकर बराल,
1: हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, उप प्राध्यापक डाक्टर प्रवीण थापा र हाड़ जोड़नी नशा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर सुभाष गुरुङ,
0: मोटर रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ, कैंसर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि सेचन,
1: यूरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश छेत्री, डाक्टर जुजुराज श्रेष्ठ,
0: नाक कान घाटी तथा थायराइड सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर विकास गुरुङ, छाला विज्ञान भेनेरोलोजी र कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले,
1: रेडियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर मनीष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ,
0: एन्टेरियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, प्लास्टिक एन्ड कस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर पियुष गिरी,
1: एनेस्थेसियोलोजिस्ट उप प्राध्यापक डाक्टर विशाल गुरुङ, डाक्टर सुस्मिता गुरुङ,
0: जनरल सर्जन प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, सह प्राध्यापक डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
1: फिजिसियन डाक्टर अनमोल पौडेल र मनोचिकित्सक डाक्टर मानकाजी थापा मगर।
2: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा पोस्ट अप सेवा फिजियोथेरापी इन्डोस्कोपी क्लोनोस्कोपी इको टीएमटी हल्चर पीएफटी युरोफ्लोमेट्री डायलिसिस सेवा र 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
3: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलआई साइन्सेस प्राली पोखरा 9 न्यू फोन 061-590-162-590-163।
4: फुटै खाए साह्रै मिठो पकाए त स्वाकै, एक पाकेटले पेट भरि नि के हो भन पक्कै।
5: यो हो बोनस चाउचाउ।